सनातनची कपादवा शंख चक्र गदा पद्मांकित पादवा अंकुश कुलिश ध्वजारेखांकित पादवा शंख चक्र गदा पद्म

उसने का जादू आ आ मेरी ताल पे नाच ले बाबू रुक रुक चलता है मेरे उसने का

0: आज पीछे हो गए आंखें
1: क्या
0: चार चार चार ओ राजा चार चार चार ओ राजा चार चार चार आज पीछे हो गया हमको आज पीछे हो गया हमको
1: क्या
0: प्यार प्यार प्यार ओ राजा प्यार प्यार प्यार ओ राजा प्यार प्यार प्यार
1: हलुआ बाबू जी हलुआ।

0: माता जी से ये कह दूंगा मैंने सुन ली रानी, माता जी से ये कह दूंगा मैंने सुन ली रानी। आज हमारे घर में दे दो, आज हमारे घर में दे दो।
1: क्या
0: तार तार तार ओ राजा, तार तार तार ओ राजा, तार तार तार। आज कितने हो गए आंखें, आज कितने हो गए आंखें। चार चार चार ओ राजा, चार चार चार ओ राजा, चार चार चार।

0: खेले दर से आया कदम आई जड़की हम तो खेले दर से आया कदम आई जड़की हम तो खेले पहली ही बाजी न गए हम पहली ही बाजी न गए हम
1: क्या
0: हार हार हार ओ राजा हार हार हार ओ राजा हार हार हार आज किसी से हो गई आंखें आज किसी से हो गई आंखें चार चार चार ओ राजा चार चार चार ओ राजा चार चार चार
2: आज न जाने पागल मनवा काहे को घबराए हित हित हित की आए रे तबीयत बिचकी बिचकी जाए बिराटा डी

साजन जाने पागल मनवा काहे को घबराए, हित हित हित की आए रे तबियत बिचकी जाए। डेड़ा ता डेड़ा ता डेड़ा ता डेड़ा ता डेड़ा ता डेड़ा ता डेड़ा ता डेड़ा ता डेड़ा ता डेड़ा।

रूप नशीला एक झलक में दिल की दुनिया लूटे। जब देखूं अलबेला आंचल दिल पे बिजली टूटे। रूप नशीला एक झलक में दिल की दुनिया लूटे। कोई शराबी मद का प्याला जैसे पी के आए। हित हित हित की आए रे तबीयत बिचकी बिचकी जाए। दिला ता दिला

सी बन के हो गए नौ तो ग्यारह, ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह, किस मुश्किल में जान फंसी है अपने बज गए बारह। होश हमारे पंछी बन के हो गए नौ दो ग्यारह, किस मुश्किल में जान फंसी है अपने बज गए बारह। रूप की गर्मी शोला बनकर दिल में आग लगाए, हित हित हित की आए तबीयत हित की जाए। अरे आज न जाने पागल मनवा काहे को घबराए, हित हित हित की आए तबीयत हित की जाए। दिला का दिला का जो जो जो जो, दिला दिला का दिला का जो जो।

आज न जाने पागल मनुआ काहे को घबराए, हिच हिच हिच की आए रे तबियत बिटकी जाए। डेड़ा टा डेड़ा टा डेड़ा टा डेड़ा टा डेड़ा टा डेड़ा टा डेड़ा टा डेड़ा टा डेड़ा टा डेड़ा।

बेला आंचल दिल पे बिजली टूटे। रूप नशीला एक झलक में दिल की दुनिया लूटे। जब देखूं अलबेला आंचल दिल पे बिजली टूटे। रूप नशीला एक झलक में दिल की दुनिया लूटे। कोई शराबी मद का प्याला जैसे पी के आए। हित हित हित की आए तबीयत बिचकी बिचकी जाए। दिलाता जी।

होश हमारे पंछी बन के हो गए 9, 2, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 किस मुश्किल में जान फंसी है अपने बज गए 12। होश हमारे पंछी बन के हो गए 9, 2, 11 किस मुश्किल में जान फंसी है अपने बज गए 12। रूप की गर्मी शोला बनकर दिल में आग लगाए, हित हित हित की आए तबीयत हित की जाए। अरे आज न जाने पागल मनवा काहे को घबराए, हित हित हित की आए तबीयत हित की जाए। दिला का जो जो जो जो जो दिला

साजन जाने पागल मनवा काहे को घबराए। हित हित हित की आए रे तबीयत बिचकी जाए। डेड़ा टा डेड़ा टा डेड़ा टडा डेड़ा टा डेड़ा टा डेड़ा टडा डेड़ा टा डेड़ा डेड़ा डेड़ा डेड़ा डेड़ा।

रूप नशीला एक झलक में दिल की दुनिया लूटे। जब देखूं अलबेला आंचल दिल पे बिजली टूटे। रूप नशीला एक झलक में दिल की दुनिया लूटे। कोई शराबी मद का प्याला जैसे पी के आए। हित हित हित की आए तबीयत बिटकी बिटकी जाए। दिला का दिला का

मैं आज न जाने पागल मनवा काहे को घबराए, हित हित हित की आए रे तबीयत बिटकी बिटकी जाए, बेड़ा टाटी।

होश हमारे पंछी बनके हो गए 9, 2, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 इस मुश्किल में जान फंसी है अपने बज गए 12। होश हमारे पंछी बनके हो गए 9, 2, 11 इस मुश्किल में जान फंसी है अपने बज गए 12। रूप की गर्मी शोला बनकर दिल में आग लगाए, हित हित हित की आए तबीयत हित की जाए। अरे आज न जाने पागल मनवा काहे को घबराए, हित हित हित की आए तबीयत हित की जाए। दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला

0: फरियाद करते करते पर्दा जरा हटा दे अजमेर वाले पाजा,
1: पर्दा जरा हटा दे अजमेर वाले पाजा,
0: अजमेर वाले पाजा।

ढूंढा मगर तुझ सा न पाया कोई। हाँ, अपनों ने मुंह को मोड़ा, दुनिया ने साथ छोड़ा, बेबस समझ के सबने बेकस के दिल को तोड़ा। अब तू ही आसरा दे।

ये ला जान पहला लोगो ये नगरी अनमोल पुत्र धोई टमाटर बाजे भीतर पूनम बोल ये चावल तेल की रखा है एक यहाँ पर बोल घोड़ा और का धोता भैया

बड़ा मुश्किल है दामन बचाना, मेरे पीछे बड़ा है जमाना, है बड़ा मुश्किल है।

0: मुश्किल है कि खामोश रहे, मेरा जिम्मा है किसी को भी अगर होश रहे।
1: हाय हाय हाय हाय सच्चे।

0: के हम ही हो के खफा भूल गए। जब मिली आंख तो सब जोरो जफा भूल गए।
1: ओ कसम खुदा की, क्या करें।

0: के हम ही हो के खफा भूल गए, जब मिली आंख तो सब जोर जफा भूल गए।
1: ओ कसम खुदा की, क्या कर

0: मुश्किल है कि खामोश रहे, मेरा जिम्मा है किसी को भी अगर होश रहे।
1: हाय हाय हाय हाय सच के है कुछ है।

सुनो, किसी दिल वाले का सवाल सुनो, कहाँ चले जी जरा हाल सुनो, किसी दिल वाले का सवाल सुनो, वहाँ खड़े तुम यहाँ खड़े हम, सोचो जरा, बोलो बोलो कुछ तो बोलो।

दिल वाले का सवाल सुनो, कहाँ चले दी जरा हाल सुनो। किसी दिल वाले का सवाल सुनो, वहाँ खड़े तुम यहाँ खड़े हम, सोचो जरा। बोलो बोलो कुछ तो बोलो।

का सवाल सुनो, कहाँ चले जी जरा हाल सुनो, किसी दिल वाले का सवाल सुनो, वहाँ खड़े तुम यहाँ खड़े हम, सोचो जरा, बोलो बोलो कुछ तो बोलो।

सुनो, किसी दिल वाले का सवाल सुनो, कहाँ चले जी जरा हाल सुनो, किसी दिल वाले का सवाल सुनो, वहाँ खड़े तुम यहाँ खड़े हम, सोचो जरा, बोलो बोलो कुछ तो बोलो, दिल ना तोड़ो गुस्सा छोड़ो, अब तो निगाहें मिला लो सनम।